सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। त्यागानुसारिणी कीर्ति। अभ्यासानुसरणी विद्या।